कि वे ये गीत प्रियंकर परेरा के हानि तम ये गीत गायने उन्हें प्रियंकर परेरा पे हित होंद गाय के एवगे मिलन गीत देव दुओ फला गयाद कि अने मगे आदरे मगे दुओ वगे आदरे कन किना माव अतहर गयाद आदरे कन किना अतहर गया वगे दुख हिते तीन बिय ओब माव अमत कर लद किनुट तिबुन आदरे आयमी वीमे वेदनाव सेमिंग मृदुलेस आन प्रश्न देवदुओ ओया माव अतहर गया देवदुओ अद मट हितन ओया मट दुर गया वगे देवदुओ मगे हिते आदरे आयमी वेलाद अभी सौंद प्रियंकर परेरा गायन देवदुओ फला गया दो गीते